सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणी है। सतगुर कीरी से होर कच्चू पिच्चू बोल दे से कूड़ी।

अंतर ज्योत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विच दर्ज है।

तीन बंदा विच इस तरह वंडदे हन। हे भाई, जे कोई मनुख अपने आप नूं गुरु दे हवाले करदा है, ओह प्रकाश रूप परमात्मा दे मेल दी अवस्था नूं समझ लैंदा है। उस दे अंदर जोत जग पैंदी है, उस दे अंदर राम दा प्रकाश हो जांदा है। पर इस अवस्था नाल जान पछाण करन वाला हुंदा कोई विरला ही है। गुरु दे सन्मुख होए अजिहे मनुख नूं इह समझ आ जांदी है कि संसार एक रुख समान है। जगत दे जी जंत मानो उस रुख दियां बेअंत डालियां टहणियां हन, जो फुल्लां पत्तरां ते रस भरे फलां नाल लदियां होईयां हन। इह संसार अमृत दी इक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिवें इक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिवें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं हुलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओह गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाओ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। सत्संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है, और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की समझदा है। ए जेड़ा संसार है एक दरखत है, और ए जीव जंत इस दरखत दियां टाणियां हैं। ए जीव जंत फुल हन, पत्ते हन, फल हन, तरवर एक अनंत डार साखा, पोहप पत्र रस परिया, ए अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। ए भाई, इस संसार अमृत दी बगीची है, अमृत दा बाग है, और इस बाग नू परमेश्वर बनाने वाला है। इस गल नू ओ समझदा है जिदे अंदर राम दा परमेश्वर दे नाम दा प्रकाश हो जाए, ते जिदे अंदर राम नाम दा प्रकाश हो जाए ओही गुरमुख बनदा है

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसे वास्ते इंसान इंसान के नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हां गल्लां दी सोझी करांदा है कि ऐ इंसान इस संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, ओदे बनाए हो जीवां नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हां गल्लां दा उदों पता लगदा है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम दी जोत जग जाए। पर ये जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान लिया है कि इह सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

गए, भगत बन गए, संत बन गए। जिन्हें इस कहानी नूं समझिया नहीं, बेशक उन्हां भगती कीती, सिमरन कीता, पर उह किसे मंजिल ते पहुंच ना सके। इसे वास्ते देखदे हां कि कई वारी बहुता सिमरन करन वाला, बहुता मंदिर मसीत गुरुद्वारे जाण वाला भी दुबदा दा भरिया हुंदा, क्योंकि गया ते है मंदिर मसीत गुरुद्वारे, पर मन विचों दुबदा ना कढ सके है, क्योंकि पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हिरदे विच नाम नहीं वसिया, प्रकाश नहीं होया, क्योंकि जिहड़ा प्रकाश है परमेश्वर दा, ओह ते दुबदा दूर कर देंदा है। जिहाली मन विच दुबदा है ते समझो कि बेशक नाम जपदा है, पर अंदर हालिए दे नाम वसिया नहीं। और ये परमात्मा दे मेल दी अवस्था जद हो जाए तो फिर इंसान दी हालत की होंदी है। भगत नामदेव जी सानू अपने शब्द द्वारा उपदेश करते हैं।

ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन किसे

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नास हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देण वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है।

ता तृष्णा रूपी जल सुख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है ये सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर दिंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती, हर इंसान भज रहा है, जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चाहता है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वो रजिया नहीं, कुछ होर चाहता है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी नहीं।

जितना समा परमेश्वर दे नाम दा कीर्तन सुनोगे उतना समा तुहानू अपने दुख कलेश भुल जाने ते जदों उस रंग विच उठोगे दुख कलेश फिर घेर लैणगे। इसे वास्ते ते गुरु महाराज भगत गुरमुख उपदेश करदे हन कि हर वेले परमेश्वर वल ध्यान रखो। जिवें कीर्तन सुनदे आ दुख भुल जांदे ने, हर वेले उहदा नाम चेते रखोगे ते दुख कलेश कदी भी तुहानू तंग नहीं करनगे। पर इन्हां गल्लां दी सोझी हुंदी है जदों गुरु अते गुरु दी बाणी दा सानू ज्ञान होवे। गुरु की है? गुरु है बाणी, क्योंकि गुरु बाणी द्वारा उपदेश देंदा है। इसे वास्ते सतगुरु जी अपने शब्द विच इस तरह फरमाते हैं,

क्योंकि बाणी गुरु देंदा है। इसे करके सतगुरु ने इंसान नु कहा किसे बेतारी दे पिछे ना लगो, बाणी नाल जुड़ो, क्योंकि बाणी परमेश्वर दी है। जो परमेश्वर कहंदे गुरु ओहो ही उपदेश करदा है। ते गुरु कहंदे तुसी मेनू परमेश्वर ना कहो, मैं भी परमेश्वर दा भेजिया आया, मैं ते परमेश्वर दा सुनेहा तुहानू देना है, ते तुसी भी परमेश्वर नाल जुड़ो। ए बाणी मेरी नहीं, ए परमेश्वर दी बाणी। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान विला लो। जेड़ा इंसान, जेड़ा पीर पैगंबर अपने नाल जोड़े कि सब कुछ मैं हां, मैं परमेश्वर हां, समझो वो परमेश्वर तू भुलिया होया। ते जेड़ा परमेश्वर नाल जोड़े असल विच, समझो ये परमेश्वर नाल जुड़िया होया है, क्योंकि ये परमेश्वर नाल जोड़ रहे हैं। ते सतगुरु जी कहंदे ने ए देवी देवते अवतार पीर पैगंबर सारियां नूं एक परमेश्वर भेजण वाला है, एक अल्लाह एक वाहिगुरु संसार ते भेजण वाला है, इस करके ओहदे नाल जुड़ो। गुरु इन्हां गल्लां दा ज्ञान करांदा है कि मेल करना है तां परमेश्वर नाल करो। ते सतगुरु जी फरमांदे हैं

पानी टिकिया रहेगा, जे पानी नो धरती ते डोलो पानी खिलर जाएगा। इसे तरह साहब जी फरमांदे हन, कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे। जिवें पानी घड़े विच टिक जांदा है, इसे तरह मन गुरु दे ज्ञान दे नाल टिक जांदा है, और ज्ञान गुरु तो बगैर नहीं होंदा।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नूं जान लैंदे ने कि सारे विच

मंजिल तक नहीं पहुंचते। गुरु की लोड़ इसे वास्ते है कि सच्चा उपदेश साडे हिरदे विच वसे, पर गुरु की प्राप्ति निम्रता प्यार और सेवा नाल हुंदी है। होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, दोनों भगत ने, भगती दोनों भरा करते ने, किसे धनी पुरश ने दोनों भरावां नूं भगत जान करके अपने घर बुलाया। भगती ते करदे ने पर हाले गुरु दी प्राप्ति नहीं। दोनों जने तानी सेठ दे घर पहुंचे। उस तानी पुरश ने दोनों भगतां दी सेवा कीती, अन्न जल छकाया और तुरन लगे हैं। दोनों भरावां नूं दक्षिणा दीती, माया भेट कीती। होता वड्डा सी, वड्डे नूं वड्डा समझ के चोखी माया। ब्रह्मा छोटा सी, छोटा समझ के थोड़ी माया दी। पर ब्रह्मा चलाक सी, उन्हें दोनों पेटावां कठियां कर ली। घर आके अधी अधी ढेरी कर ली। होता कहन लगा, ए तेरे वास्ते ठीक नहीं। जितनी माया तेनू दिती है उतनी तू लै, जितनी माया मेनू मिली है वो मेरे कोल रहन दे। पर ब्रह्मा छोटा भरा कहन लगा, सेठ ने तेनू वड्डा समझ के ज्यादा माया दिती, मेनू छोटा समझ के थोड़ी माया दिती। पावे उन्हें माया तेनू बहुती मैनू थोड़ी दिती, पर गए थे आपा कट्टे से, इस करके असी बराबर हिस्सा करना। और पैसे तू झगड़ा हो गए, और झगड़ा हुंदा भी अक्सर देखते हैं। देश दे वजीर या सरकारी लोग भी चौधर और माया दे पिछे अपना जमीर देश कौम भी बेच देंदे हैं। इस वास्ते नहीं कि उन्हां नूं कोई सेवा दा चाह, बहुत घट हुंदे हैं सेवा वाले, बहुते ते अपने स्वार्थ वास्ते ए नारा लगांदे ने असां सेवा करनी है। नारियां दे नाल सेवा नहीं हुंदी, सेवा ते मन हुंदी। हुण मन विच लालच, दोनों भरा हैगे ने भगत पर माया पिछे लड़ पे। ए लड़ाई इथों तक जा पहुंची, वड्डे भरा ने श्राप दे दिता, ब्रह्मा तू लालच कीता, अगला जन्म तेरा तंदुए दा होवेगा। पानी विच रह के, पानी दे विच रहन वाले जीवां नूं खा के अपनी लालच वाली ए बिरती पूरी करेगा। हुण ब्रह्मा ने भी तप कीता, उसनू भी गुस्सा आया, उसने भी श्राप दे दिता। कहन लगा, ठीक है भरा, जे मैं मर जाना तो जिंदा तू भी नहीं रवेगी, तेरी भी मौत होवेगी, तू जंगल दा मस्त हाथी बनेगा। और जंगल विच भटकदा भटकदा एक दिन उसे जगह आवेगा जिथे मैं होवांगा। मैं पानी दे विच होवांगा, तू पानी पीण आवेगा, ते मैं फिर अपनी तारां दे नाल तेरियां लत्तां पकड़ के उथे पानी दे विच मैं तेनू गोते दे दे के मारांगा, और इस गल का बदला लवांगा कि तू मैनू श्राप दिता है। ने भगत पर माया विच आ गई, और माया ने दोनों नूं भगती दे थां तों थले सुट दिता। समा आया, दोनों दी मौत होई, वड्डा मस्त हाथी बन गया और छोटा तंदुआ बन गया। इस गल नूं गुरबाणी विच भी साहिब जी बयान करदे हन।
राम गुर सरन प्रभु रखवारे, ज्यों कुंचर तंदुए पकर चलायो, कर ऊपर कड निस्तारे। गज पत पार उतारे अनेक शब्दों विच इस शाखी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच और हिंदू पुराणा दे विच आंदा। एक प्रहाती बनिया, एक तंदुआ बनिया और वो समा आया होता जिहड़ा हाथी बनिया सी। बहुत सारे हाथी इहदे नाल ने, इह जंगल विच फिरदा फिरांदा गंडका नदी दे डुंघदे आ पहुंचिया। गर्मी सी, नदी दे विच जद वड़िया और किनारे ते धुप करके पानी गर्म सी। इह ज्यों ज्यों अगे होया इस नूं ठंडा पानी मिलिया और हौली हौली यह हाथी पानी दे विच काफी अगे तक चला गया और अगे इहदा छोटा भरा तंदुए दी जून विच बैठा सी। उसने अपनियां तारां दे नाल हाथी दे अगले पैर पकड़ ले और हाथी नूं अपने वल खिंचना शुरू किया। पहला ते हाथी ने परवाह ना कीती, पानी पी के वापस मुड़न लगा। पिछे नहीं मुड़िया जांदा ते हाथी समझ गया मैनू कोई पकड़न वाला तगड़ा जीव है। इसने योर लाया, कुछ पिछा आया पर फिर तंदुए दा योर चलिया ते हाथी नू खिंच के ओ पानी दे

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी नहीं। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आओ। ये पहल तू करनी है। प्यार असां देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए ना भाई। वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, ये तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मूंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत

देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो। कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

पावक में अर पवन हूँ मैं, पृथ्वी तल में सो कहा न जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई।

व्यापक हैं सब ही के भिखे। कछ पाहन में परमेश्वर नाही, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

अजय सरों में पीख्या खाए ऐसी दरगे मिले सजाए रोवे रामन काला पया सीता लखमन बिछड़ गया रोवे ते सर लंक गवाए जिन सीता आंधी डारू आए रोवे पांडव पै मंजूर जिनके स्वामी रहते हजूर रोवे जन्मे जख गया एक ही कारण पापी पया रोवे शेख मसा एक पीर अंतकाल मत

ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੁਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਛਲਦਿਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੇਜ਼ ਵਹਿੰਦਿਆਂ ਨਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਮਨ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭਾਜਣ ਕਾਹਦੀ ਪਈ। ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਲਖਨੰਦਾ ਵਗ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਹੇਮਕੁੰਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਬਦਰੀਨਾਥ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ। ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਗਦਾ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਗੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਧੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰਾਈ ਤੋਂ ਲਹਾਈ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀਏ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਬੱਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ ਕੁਝ ਕਿਧਰੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਵਰੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਪਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਬਰਸਾਤ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਧੁੱਪ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਪਿਘਲੀਏ ਕਤਰਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਤਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਸਾਗਰ ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਫੈਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਤਨ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਭਟਕਣਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਤਰੇ ਵਹਿਣ ਬਣ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਗਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਈ। ਜੀਵ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਰਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਨੇਕ ਨੇ, ਸਫਲ ਨੇ, ਮਗਰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਾਡੀ ਮਾਰਗ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਿੱਧੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਪਥ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਸੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੋਰਾ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਯਤਨ ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੂਲ ਨੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਦਾਸ ਆਉਂਦੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋਧਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੱਚੀ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਹਿਰਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਰਾਸਤ। ਰਾਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ, ਸੱਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਰਾਈਟ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਾਰਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸਤ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ। ਰਹੇ ਰਾਸਤ ਤੋਂ ਰਹਿਰਾਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਬਣਿਆ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ। ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਬਦਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਹਿਰਾਸਤ ਬਦਲ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਰਹਿਰਾਸ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਪਏ ਪਾ ਖਾਕ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ।
गुरु चरणा दी खात ही हो जाए के भला भाई जी धर्म के मालिक ते चलन वाले दे अपने अपने असूल ने। सिख का भी असूल है, गुरमुख का भी असूल है, ते हर धर्म वाले ने, हर धर्म वाले ने इशनान नू बड़ी महत्ता दिती है। गुरमत विच भी कहा गया है गुरमुख नाम दान इशनान। भाई साहब जी सिख का नहाना की, सिख का इशनान की? ते भाई साहब कहंदे ने, कहंदे ने गुरसिख का इशनान, गुरमुख का इशनान यह है कि निरा बाहरों ना अपने आप नू साफ करे, ये निरा साबण दे नाल शरीर नू ना साफ करे। धन गुरु नानक कहंदे भरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोतै उतर सुखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईए ओ धोए। इसे तरह भरिए मत पापा के संग, ओ धोपै नावे के रंग। शरीर गंदा हुंदा है, कपड़े गंदे हुंदे ने, साबण नाल साफ कर लेने। मन गंदा हो जावे ते नाम दे रंग नाल धोता जांदा है, साफ करना है। मन भी जरूर साफ करना है। भाई साहब कहंदे ने गुरमत लै, गुरु की मत लै के माड़ी मत दुरमत कुमत नूं अंदरों धो के बाहर कढ दिंदा है। सिख दा असली नहाउणा तां इह। वैसे तां सिख वास्ते है कर इशनान, सिमर प्रभ अपना मन तन पहे अरोगा। तू बाहरला इशनान करेगा तेरा शरीर अरोग रहेगा, तू मन दा इशनान पाणी द्वारा करेगा तेरा मन अरोग रहेगा। इस दोहरी अरोगता वास्ते दोहां पक्खां तों हाइजीनिक पक्ख नाल, मन दी हाइजीन इस गल विच है कि मनुख मन नूं पापां तों साफ रखे, ते तन दी हाइजीन इस गल विच है कि इस नूं गंदगी तों साफ रखे। अज नारे लगदे ने शहरां नूं साफ रखो, गलियां नूं साफ रखो, घरां नूं साफ रखो, शरीर नूं भी साफ रखो। लेकिन जे मन साफ ना कीता ते बाहरली सफाई बेकार होके रह जाए। भाई साहब कहिंदे ने गुरमत लै दुरमत मन धोवे। अच्छा भाई जी ये तो हो गया इशनान, हो गया हुण पूजा करेगा। धर्म दे मार्ग ते चलन वाले दी पूजा भी तो कोई हुंदी है, गुरमुख किस चीज की पूजा करेगा? भाई साहब कहिंदे ने गुरमत अनुसार कहिंदे ने गुरसिखी का पूजना, गुरसिख पूज पिरम रस पोवे। गुरसिख गुरसिख की ही पूजा करे, क्योंकि गुरसिखा अंदर सतगुर वरते। जो सिखा नू लोक दोचै सो गुर खुशी आवे, जिन्हें गुरु की खुशी लैनी हो गुरसिखा की खुशी लवे। गुरसिखा की पूजा सेवा करने वाला गुरु की पूजा सेवा करता है। वैसे साहब कलगीधर पातशाह जिसले सिखा ने पूछा सी नांदेड़ विखे महाराज जी पातशाह ने कहा सी गुरसिखो करनी पूजा अकाल की, दीदार खालसे का परचा शब्द का। जिन्होंने पूजा करनी है अकाल पुरख की पूजा करनी, मगर अकाल पुरख का नजर नहीं आता किदे विचों करिए। साहब कह लगे सिख की पूजा करोगे गुरु की पूजा होगी, गुरु की पूजा अकाल की पूजा है। कि महाराज फिर जिदे चरनी ला चले हो, गुरु ग्रंथ साहब के मथा टेकन वास्ते कह रहे हो, यदि पूजा नहीं करनी। साहब कह लगे यदि निरी पूजा नहीं करनी, निरे धूप दीपदा देंदे रहना, इनू समझना। इस शब्द विच भाई साहब की इस पौड़ी विच अंतली तुक सार तुक है साध संगत गुर शब्द विलोवे। गुर संगत नाल रल के गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के नाम प्राप्त करन वास्ते, नाम दा मखण लैण वास्ते, नाम दा रस लैण वास्ते गुरमुख गुर शब्द नूं रिड़के। हुण जिहड़ा गुरमुख माफ करना गुरमुखी नहीं पढ़िया, वह गुर शब्द नूं किवें पढ़ेगा? असीं सारा कुछ चार चार पंज पंज ज़बानां पढ़ लैंदे आ, हिसाब पढ़ लैंदे आ, बड़ा कुछ पढ़ने आ, लेकिन गुरमुखी पढ़ने वास्ते जे सिख नूं वक्त नहीं ना समझ लैणा आ जाए, इस राह ते तुरन दा जतन नहीं कर रहा, नीयत बनी नहीं अजे। गुरमुखी पढ़नी ते गुरमुख बन के गुरसिखी दे विच प्रवेश करना, गुरबाणी नूं विचार सहित पढ़ना, गुरबाणी नूं समझण दा जतन करना। महाराज पंचम पातशाह नूं सिखां ने पुछिया सी महाराज बाणी पढ़न दे की लाभ ने? साहिब गुरु अर्जन साहब ने दस्सिया सी जिहड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा ध्यान देना, इच्छा रख के पढ़ेगा सो पदार्थ पाएगा। असी आम तौर पर इच्छा रख के पढ़ने, असी बाणी पढ़ने, कोई ना कोई मकसद सामने होता है। महाराज कहते ने मकसद पूरे हो जाने, जेड़ा इच्छा रख के पढ़ेगा उहदे मकसद पूरे रखो। ते महाराज कहते ने जो विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान हो, जेड़ा बाणी नूं ध्यान नाल विचार के पढ़ेगा वह आप बंदा बड़ा समझ वाला अकलमंद ते प्रभु नूं समझण वाला हो जाएगा। विचार सहित पढ़ेगा सो ज्ञानवान होवेगा, प्यार सहित पढ़ेगा सो मेरे नेड़े होवेगा, श्रद्धा सहित पढ़ेगा सो प्रभु के नजदीक होवेगा। गुरसिखां ने प्यार नाल भी पढ़िया, श्रद्धा नाल भी पढ़िया,
विचार नाल भी पढ़िया है, इच्छा करके भी पढ़िया, लेकिन सब तो श्रेष्ठ वह है कि विचार सहित और श्रद्धा सहित कट्ठा पढ़िया जाए। विचार ते श्रद्धा जिथे रल जान उथे गुरमुखताई गुरसिखी शुरू होंदी। भाई साहब पूजा तो हो गई गुरसिख की, धन गुरु नानक जिस वेले सारसराय कोल पहुंचे ने, पहुंचे तो किस तरह आप जानते, भाई मरदाना हीरा लैके पहुंचे। सारसराय ने 101 रुपया उस हीरे की भेटा रख दी, कहिंदा मैं मुल नहीं पा सकता, हालांकि मुल पाउण वालियां ने गाजरा मूलियां भी पाया सी, मठियाई का सेर देण नूं भी तैयार सन, मगर जौहरी ने मुल नहीं पाया। वह कह लगा एडा कीमती रह दा मुल नहीं पाया जा सकता, 101 रुपया भेटा दे सकना, मेरे बजुर्गों ने कहा सी कदे इहो जिहा हीरा वेखे ते भेटा रख दे। भाई मरदाना भेटा लैके पहुंचे, एक दो फेरे भाई मरदाने दे वजे सालसराय महाराज के चरणा च हाजिर होया, अपने नौकर नूं नाल लैके दुकान बंद करके महाराज के चरणा विच आ गया। बड़े वचन विलास होए, कई दिन महाराज फिर इहदे घर विच टिके। उही सालसराय धर्म सालसराय जौहरी की धर्मशाला मुड़के साहब कलगीधर पातशाह का जन्म स्थान बन गई। पटना साहब विखे पवित्र स्थान से महाराज कुछ दिन टिके। वह कुछ दिन टिकिया टिकिया सालसराय के नौकर अधरके नूं ज्ञान हो गया, उन्हूं मस्तियां प्राप्त हो गई। सालसराय ने वेखिया कि मेरा नौकर इस वेले बड़े उच्चे मंडलों च उडारियां ला रहे, हथ बन के कहन लगा साहब नूं, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहन लगा, पातशाह आपने अपने सेवक ते मेहर कीतियां ने, मेरे इस चाकर ते मेरे इस नौकर ते बड़ी कृपा कीती है, इहनूं ज्ञान बख्शिया, इहनूं नाम बख्शिया, इहनूं बड़ी उच्ची सुरत बख्शी है, मेरे ते भी कृपा करो। धन गुरु नानक कहन लगे भाई असीं तां हुण चले आ, हुण तूं इहदे चरनी पै जा, ध्यान दे, हुण तूं इहदे चरनी पै जा। कहन लगा महाराज नौकर दे चरनी पाउंदे हो मालक, मेरे कोलों लैके खांदा है। धन गुरु नानक हस पए, कहन लगे रुपये तेरे कोलों लैके ये खांदा रहा है, नाम इहदे कोल लैके तू लै लै, इस वेले नाम वालों यह धनवंत है, रजिया होया ये इथों पहला प्राप्त करके रजिया होया, रुपये तेरे कोल सन ते मंगदा रहा लेंदा रहा चाकर बनिया रहा, लेकिन जे नाम लैना ही भाई असीं तां चले आ सालसराय, जे नाम लैना

ऐसे भी मनुख आए पर चले गए। जुगां जुगांतरां तो मैं वेखदा आ रहा हां जेड़े एदे मालक बनदे माण अहंकार विच मत्ते होए अपने आप नूं खुद मुख्तियार दसदे सन। मैं तेरे कोलों पुछदा ओ किथे चले गए। अखीरलियां पंक्तियां विच एक ख्याल पेश कीता है।

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्ह ने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। साथ संगत बोलो श्री दुर्दे हो पिछली प्यारी।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी, मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी, सिर ते चुकनी, ते फिर सत्कार दे नाल मन विच भावना लिया के आके गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी इशनान दी सेवा करनी।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल

गुरु पातशाह इत हूं पिट हो रही है, माफी दे देना। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। अज एडा मीह पै रहा है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलाई

चुक चुक जा रहे साथ सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकती।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सिदक का फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता। रजनी, मेरा रोग तो उतर गया। रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी हूं मेरे पति जिन्हें मैं इतने छटके गई सी, कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबील वाले बाबा जी तो पानी पियाया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग कि ठीक होया?
0: यह सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जाने तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा यह छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म धोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार वेखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार विखे सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने, तेरी कुदरत तू वे जाने और ना दूजा जाने। जिसनों कृपा करे मेरे प्यारे सोई तुझे पछाने, तेरे आ भक्तों को बलिहारा खान सुहावा सदा प्रभ तेरा। रंग तेरे अपारा, रंग तेरे अपारा, खिन में और खिने में औरा अचरज।

काश हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छोर प्राप्त होती, कितने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जान रहा है। गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद। दरवाजे खोल।

अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी।

खुंजाया जो सेवा तो बिना चला गया। आज 12 साल का आखिरी दिन है, आज एडा चखड़ चल रहा है।

गुरु पातशाह इतना हुण पिट हो रही है, माफी दे दे। ते फिर व्यासा वाल तुर पे, गागर जल्दी परी सिर ते चुकिया। आज एडा मी पह रहे है, जखड़ चुल रहे हैं। बाबा अमरदास जी आ सेवा दे पुंज, सिर ते गागर चुकी ते दुरदे हुए आ रहे हैं। रस्ते विच जुलायां

नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सूहे जिठे सबे थाओ नहीं तुझे है बदो पुरख बिधाते आंखों सूहे वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर वसती सगन अपार अनूप रामदासपुर हरिहर नानक कस

आपे ही सब आप है प्यारा, आपे थाप उथापे, आपे वेख विगसदा प्यारा, कर चोज वेखे प्रभ आपे, आपे वन त्रण सबत है प्यारा, आपे गुरमुख जापे, जप मन हर हर नाम रस ध्रापे, अमृत नाम महारस मीठा, गुर शब्दी चख जापे, आपे तीरथ तुलहड़ा प्यारा, आप तरे प्रभ आपे, आपे जाल ली हर आपे, आप अभुल न भुलई प्यारा, दूजा अवर न जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, धुन आप वजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे।

आप पकावे आप भांडे दे परोसे आपे ही बैखावे आपे जल आपे दे छिंगा आपे चुली भरावे आपे संगत।

मत भूले कहूं पवन है के बहे बेग ऐसे कहे मोन आवे कथों ताहे कैसे कहूं नाद है के भली भांत बाजे कहूं पारधी है धरे बान राजे।

कतहु सुचेत होय के चेत न कुचार कियो, कतहु अचिंत होय के सोवत अचेत हो, कतहु भिखारी होय के मांगत फिरत भीख, कहूं महादान होय के मांग्यो धन देत हो।

कहूँ देवतान के दीवान में विराजमान, कहूँ दानवान को गुमान मत देतो हो। कहूँ इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी से, कहूँ इंद्र पदवी छिपाए छीन लेतो हो। कतहूँ विचार अविचार को विचारत हो, कहूँ निज नार पर नार के नकेत हो। कहूँ बेदरीत कहूँ तासो बपरीत, कहूँ त्रिगुण अतीत का।

कऊ शस्त्रधारी कऊ विद्या के बिचारी कऊ मारत आहारी कऊ नार के नकेत हो कहूं देव बानी कहूं सारधा भवानी कहूं मंगला मेड़ानी कहूं श्याम कहूं सेत हो।

एक होर शब्द विच अपनी जीवन दी ओ झाकी दर्शा रहे ने, जो कुछ उन्हां नाल बीतिया, जो कुछ उन्हां नाल कीता गया। कहिंदे हन एक वारी दा जिक्र है, मेरियां बाहां बन के लत्तां बन के गठड़ी दा रूप देख के, गठड़ी वंगर जिवें गठड़ी बद्धी हुंदी, मैनूं हाथी अगे सुटिया गया। पूजा बांध पिला कर डारियो, पर वाहिगुरु तेरा लख लख शुक्र है, हाथी नू उस गठड़ी विचों पता नहीं कैसा अक्ष पिया, की दिसिया, हाथी चीका मारदा भज गया।

मेरे ठाकर तुम राजोर काजी काजी बकबो हस्ती तोर। जेड़ा महावत हाथी ते बैठा सी काजी ओनू कह रहा है महावत तू अपनी सही मेहनत च ड्यूटी नहीं कर रहा ते एदी सजा तैनू भुगतनी पैगी। अरे

कबीर जी महाराज ने कैसी बात कही है। कहने हाथी तो नमस्कार प्या कर दिया, हाथी अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? जेड़ा राम मेरे च बैठा होया ओ ही हाथी च बैठा होया। दे बसे भगवान कहंदे ने मैं हैरान हाँ भाई मैनू सजा क्यों मिल रही, ना मैं चोरी की, ना मैं डाका मारिया, ना मैं कोई कतल किया, कोई गलत काम ही नहीं किया, सजा किस गल दी? क्या अपराध संत है कीना, बांध पोच कुंचर को दीना, बांध पोट कुंचर को दीना, कुंचर पोट ले।

0: You're listening to CCAP Radio.
1: एकमकार सतनाम कर्ता पुर निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त सजूनी से भंग प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
2: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असि भी इन्हें दर्शन करने आया किथे मिलेंगे
1: सचखंड विखे
2: सचखंड
1: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर सड पागा च उन्हों दे दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्हों दे रू गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख सर दी सेवा करा रहे ने
2: तुंग पिंड
1: हाँ तन गुरु अमरदास तन गुरु रामदास
2: तन गुरु अमरदास
1: तन गुरु रामदास
2: किन्नी सोनी था है तुसी दो घड़िया आराम कर लो ते मैं किसी पिंडो जाके कुछ खान भी ले आनी नाले पता कर लें कि तुम पिंड किन्नी दूर है अच्छा
1: छेती आना तन गुरु रामदास

0: हे परमात्मा, तुम्हारे पुकार सुन ले, माता के दरबार श्री के सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मभारी। धन गुरु अमरदास।
1: धन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: नस तो जाए सरोवर।